कुछ भी पहले दे दू वार्निंग, पार्टी चले गेट सेक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो या

काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं, जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो

का पेशेंस मेरी टेस्ट न कर रहा। डीजे आले गाना बजा दे जून सब भी कह रही है, बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो रह रही है।

पटक पटक लॉन्डो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमों बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

पागल सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

देख के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने ये तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

How dare you? कबर दार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।

सालों से कमिंग सून है पर तू हिम्मत न हार, दिल छोटा मत कर, साथ मेरे चल, मेरा हाथ पकड़ कर, आंखों में तू आंसू लेके सोया न कर, बेबी बादशाह की जान है तू रोया न कर।

गाने थे सुनते हम ईयरफोन की एक तार तेरे कान में एक मेरे कान में सीने पे रख के सब सितारों को उंगली से जोड़ जोड़ के बनाती थी तस्वीरें आसमान।